0: वोडाफोन मेकअप नंसन सीमेंट काबों निकाले को दिखाने बंग करके कहना आने के द फाइव अप यौन तेरे बुइंतारा के तेरे में बुइंतारा द रिचार्ज द फोर अप यौन द वबुइंतारा द थ्री अप यौन द बुइंतारा के तेरे में द वनंतारा द रिचार्ज और द टू अप यौन द वोवा के तेरे नुवंतारा न कौन द वनंतारा और नेट मनी इबुकिन द वनंतारा और द तेरे नुवंतारा इन अबे दाइना द वन अ दबों द नो वन रिचार्ज इन अबे दाइना वोवा दबों द बुइना और द बुइना द वन अ रिचार्ज इन अबे दाइना इबुकिन द नोवा दबों और द वबुइंतारा इबुकिन इशुवा दबों और वाई कर जुनरिक अर तेरे बुइंतारा और तेरे में बुइंतारा द रिचार्ज अर न कोना न बेन दाइना इन अन द बुइना दबों इरी बो रॉय अ जों न खैरा कि न होय न लिकरिन किम न द मेकअप पनंसा
1: Holy Pass. Orang kait buru roy yon de Holy Pass.
0: Karena kita ambil data ayah kesana, awak kata pilih kebun ana. Cinta mana tentara bona? Ina nanti uwan de bong. Orang kait star doan de bong. Ia bukan kerana nam de buru roy yai. Iri semua aje pun nak kira kita kau yai. One home.